तामा, पीतल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: hear yourself. Swayam ko awaaz lai sunnuhos.
1: क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये मनुष्य शरीर है? हम कौन हैं? भगवान क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि भाषा, देश, रंग, अंग का भेदभाव नहीं करते।
0: Hear yourself. स्वयं को आवाज़ लाए सुनो।

0: सक्छन्।
1: यदि त्यसो हो भने साइड इफेक्ट नहुने, जटिलता नहुने, बेहोश गर्न नपर्ने, छोटो समयमा सम्पन्न हुने, चिरफार गर्न नपर्ने, अस्पतालमा भर्ना हुनै नपर्ने गरी लेजर प्रविधिबाट समस्याको समाधान गरिन्छ।
0: आउनुहोस् प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान अब सहारा इन्टरनेशनल फर्टिलिटी सेन्टरमा।
1: सम्पर्क सहारा इन्टरनेशनल फर्टिलिटी सेन्टर, पोखरा 5 पर्स्याङ चोक, फोन नम्बर 061-574-668, मोबाइल नम्बर 98-560-28-104।
0: तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता, सहारा इन्टरनेशनल फर्टिलिटी सेन्टर।
2: कृषि विकास बैंक लिमिटेड ल केवाईसी विवरण धबै बिबतेर ने जरूरी फ्रेडी ग्राहक मिथेब मिथेब स्योमै बैंकर लब के रूब धै छ्याब लब लागिरे रुसैल केवाईसी धै ग्राहक मोसेब विवरण धबै विवरण हमक लमु चदेबालो क्योइमी टिब थ्यो मोबाइल नम्बर लब के छो प्राणी विवरण धै रुसै औ विवरण क्या चतसिम विषा रुसैले कार तब थ्योर्बे खैबै बैंक छो जरियासी थेरै सेल्पीसी केवाईसी विवरण धबै विवरण हमक लमु कृषि विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय रामसाहा पथ काठमाडौं।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705050557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पोख।

तामा, पीतल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

0: तिमीलाई छोड़ जाने मेरो होइन बाध्यता हो। म जहाँ गए पनि मेरो मन पनि तिमीसँग छ।
1: रॉबिन जी, मजबूरी का नाम देकर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पूरी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी।
0: मैं देखो चिन्ह आप।

0: बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार चिप्पेढुंगा पोखरा सम्पूर्ण किसिम का खेलकूद का सामग्री होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिने ठाउँ विभिन्न देश का जर्सी सुपथ मूल्य में पाइन आफूलाई मन पर्ने देश को जर्सी का लागि सम्झन होस् बाकीलाल स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर मोहन कुंवर संपर्क 9816692983 9855 समझनु सही बाकीलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार
1: आयो है मासू ताजा मासू दोस्ती।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: उत्पादित अर्गानिक कृषि उत्पादन मार्फत स्वस्थ जीवन का लागि इन्द्रेनी अर्गानिक फार्म।
1: हाम्रो इन्द्रेनी अर्गानिक फार्ममा विभिन्न किसिमका हर्ब्सहरू हामी उत्पादन गर्छौ। बजारमा हाम्रो अहिले पनि मार्केट एकदमै राम्रोसँग गइरहेको छ।
0: विगत 20 वर्षदेखि कठिन परिस्थितिका बाल बालिकाहरूको जीवन र भविष्यका लागि शिक्षा आश्रय जीवन र भविष्यका लागि रेनबो चिल्ड्रेन होम।
1: रेनबो चिल्ड्रेन होम नेपालमा हामीले विभिन्न कठिन परिस्थितिका बाबु नानीहरूलाई त्यहाँ राखेपछि उनीहरूलाई 12 पढाएर आत्मनिर्भर बनाएर पुनस्थापना गर्छौ।
0: यी सबैका परिकल्पनाकार महिला उद्यमी सामाजिक व्यक्तित्व गोमा ढकाल। सम्पर्क नम्बर 98560275900।
2: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
3: वेस्ट सल्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर। अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस, 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस।
2: अब सब को लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवाहरू को लागि वेब सर्फर नेपाल। अरू भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस सेवा को लागि वेब सर्फर घर घर मा फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस।
4: कन्ट्याक्ट 0615553050 0615589848।
2: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np।

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-1254 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारी में जानी मनसाय बनाई रहनु भएको छ भने नागढुंगा पोखरा में रहेको नेशनल एक्सपोर्ट मेनपावर कंसल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया सहित रोमानिया लगायत का यूरोपियन राष्ट्र का विभिन्न कंपनी में वैदेशिक रोजगारी को सुवर्ण अवसर। कुक, किचन हेल्पर, वेटर, सिक्युरिटी गार्ड, फैक्ट्री वर्कर, डेलीवरी बॉय, ड्राइवर, हाउसकीपिंग, हेल्पर, क्लीनर लगायत का क्षेत्र में वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्। खाना बस्ने को सुविधा सहित मासिक तलब न्यूनतम 40,000 देखि 1,00,000 सम्म। संपर्क नेशनल एक्सपोर्ट मैनपावर कंसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड नागढुंगा पोखरा कास्की फोन नंबर 061-553-071 98067-81234 97050-77123 व्हाट्सएप नंबर 98011-77123।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकी सहर पोखरा।

0: हजुर, हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का गरगहनाहरू बिना रसायन ग्यारेन्टी का साथ तयार गरिन्छ। साथै पुराना गरगहनाहरू साक्षर का साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
1: सम्पर्क गुप्त कालिका समीक्षा सुनसादी पसल, बागलुङ बस पार्क 2 पोखरा, प्रोपाइटर गणेश बहादुर सुनार, 061-533-904, म्यानेजिङ डाइरेक्टर लोकबहादुर सुनार लोकेश, 98462-82-989।
2: कृषि विकास बैंक लिमिटेड ल केवाईसी विवरण धबै बिबतेर ने जरूरी फ्रेडी ग्राहक मिथेब मिथेब स्योमै बैंकर लब के रूब धै छ्याब लब लागिरे रुसै ल केवाईसी धै ग्राहक मोसेब विवरण धबै विवरण हमक लमु चदेबालो क्योइमी टिब थ्यो मोबाइल नम्बर लब के छो प्राणी विवरण धै रुसै औ विवरण क्या जतसिम बिस्या रुसै दे कार तब थ्योर्बे खैबै बैंक छो जर यासी थेरै सेल्फीसी केवाईसी विवरण धबै विवरण हमक लमु कृषि विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय रामसाहापथ काठमाडौँ
3: नव युनिक गिफ्ट एन्ड किचन स्टोर्स पोखरा 5 0 किलोमिटर।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856126 9852110504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
1: वेस्ट सल्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
0: अब सब को लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
2: कन्ट्याक्ट 0615553050 0615589848
0: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

0: वफादारी बैठा था ना थप्पादारी हो जाल वाम खाली काम था ना मक्के खाली हो पत्तवाइली काम ले काई दौली हो पत्तवाइली काम ले काई दौली हो नमस्कार वो आल अधिकारी कपड़े आरोहिले उठते उल्टा रेडियो सफलता
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज
2: नमन लाइव।

0: हजुर, हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का गरगहनाहरू बिना रसायन ग्यारेन्टी का साथ तयार गरिन्छ। साथै पुराना गरगहनाहरू साथेरका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
1: सम्पर्क गुप्ता कालिका समीक्ष सुनसादी पसल, बागलुङ बस पार्क दुई पोखरा, प्रोपाइटर गणेश बहादुर सुनार, 061-535-904, म्यानेजिङ डाइरेक्टर लोकबहादुर सुनार लोकेश, 98-462-89-999।
2: कृषि विकास बैंक लिमिटेड ल केवाईसी विवरण धबै विवतेर ने जरूरी फ्रेदी ग्राहक मिथेब मिथेब स्यौमै बैंकर लब के रूब धै छ्याब लब लागिरी रुसैल केवाईसी धै ग्राहक मोसेब विवरण धबै विवरण हम कलमु चदेबालो क्योमी टिब ख्यो मोबाइल नम्बर लब के छो प्राणी विवरण धै रुसै औ विवरण क्या चिम विश्या रुसैले कार तब ख्योर्बे खैबै बैंक छो जर यासी थेरै सेल्फीसी केवाईसी विवरण धबै विवरण हम कलमु कृषि विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय रामसाहा पथ काठमाडौँ।